चलकर ये मंजर है, चाहत की फजाओं में मदहोश है। तेरी प्यार की तेरी राहत की तेरे इश्क में बहकर ये दिलबर है, तेरे इश्क में चलकर